0: radio 순대인가요? 한번 마시죠 다 헐고 다
1: 3 विकास क्वाथा सुंदर हिंदू का सामुदायिक रेडियो बुद्धावा नदी बिंदु छमेगा
2: यति बेला 12 बजे